0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
5: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कूल किंग।
7: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
8: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
9: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
13: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
14: Ek duni do do duni chahi intikhab ke inamat dhai hazaar।
15: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
16: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
17: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
18: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
19: ये क्या है भाई?
18: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
20: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
18: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
21: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
22: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
23: This program is brought to you by
24: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
25: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
26: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
27: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
28: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जस्ट कैश।
29: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
30: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
31: एंड तूफान है, हर जीत की पहचान है।
32: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
33: बैन अलावामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरकीब देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
34: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
35: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
36: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
37: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
38: ہماری ذمہ داری ہے۔
39: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
34: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
40: Like us on facebook.com/FM247365
41: FM247365
42: FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
43: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
5: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry, the offer is valid for a limited time only. Higher, more creation, more possibilities.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
2: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
1: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahinon ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
8: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
1: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
0: And
9: agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
10: jo chahe khareedo, paise aaram se de do. Ye lo buy just cash.
0: And
10: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
11: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
12: Tufaan hai Har jeet ki pehchan hai
0: And
10: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: एजीएस ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
11: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry, the offer is valid for a limited time only. Higher, more creation, more possibilities.
12: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
13: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
14: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
15: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap mad subscription bhi with free installation. 144 Hz picture quality.

0: रेजोल्यूशन 144Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
2: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में जैसे कि फ्री चेकबुक फ्री बैंकर्स चेक फ्री SMS अलर्ट्स फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं MCB बैंक फॉर लाइफ

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग।
6: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
4: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
11: MCB1 Current Account, har Pakistani ka ek account, jo de raha hai banking ki beshumar sahuliyat ek account mein, jaise ki free checkbook, free banker's check, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB One current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
10: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
13: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
14: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
15: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
16: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
17: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
16: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de aazadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
18: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry. The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
19: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
20: Higher mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMad subscription bhi with free installation 144 hertz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month free replacement ke saath aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye Higher more creation more possibilities

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: एमसीबी वन करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
7: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
8: and अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें,
9: and जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
10: and live lighter, have a weight management conversation with your doctor today,
11: and फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
12: and तूफान है
0: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
13: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
15: Let's celebrate
16: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
5: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
6: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
8: एंड तूफान है
6: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
9: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
11: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कूल किंग,
4: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल,

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. दिल को है आराम।
9: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
10: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
12: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस कैश।
13: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
14: एंड

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
6: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
0: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
6: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश।
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
3: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
4: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड

0: and
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश किया जा रहा है।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: 247-365. FM 247-365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM247365
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पालक से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
5: Let's
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 1.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM 247 365 FM 247 365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye pagam. حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
4: Ahmed, hatu wahan se.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: 24-7-365. FM 24-7-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
5: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
8: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
11: Only music, no RJ talk.
10: This is FM 100.
12: Come on.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se. हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Keep it locked to 100 FM.
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: एमसीबी वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसी को तस्लीम करना है।
10: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: एमसीबी वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
0: facebook.com/FM247365
13: FM247365।
14: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
0: Keep it locked to 100 FM.
15: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
16: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازہ نہ لگائیں۔
17: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
16: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
17: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
15: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
18: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد،
11: Rahim Yakan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
13: Assalamualaikum Pakistan.
19: Abhi aap sunenge Jumatul Mubarak ki khususi nashriyat FM 100 par.
20: Zahir ki aankh se na tamasha kare koi, ho dekhna to deedae dil wah kare koi. Ad baithe kya samajh ke bhala tur par kaleem, taqat ho deed ki to taqaza kare koi.

FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

أشهد أن محمدا رسول الله.

像阿公啊、小祖宗啊，还有先祖他们。阿拉伯。

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: पब्लिक सर्विस मैसेज. शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें. ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें. यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझबूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 24/7 365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंट्रास्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: कूल किंग,
7: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
8: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
10: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
11: Like us on facebook.com/FM247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: 100 FM।
7: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar.

0: it's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular बैटरी दिल को है आराम.
0: And Cool King हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी. And
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश.
0: And
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
5: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
0: Like us on facebook.com/fm247365.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimi Khan. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
6: अहमद हटू वहाँ से।
0: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: कूल किंग।
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ, लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
12: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
12: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
14: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
15: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
16: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
17: ये क्या है भाई?
16: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
18: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
16: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
5: and अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें,
6: and जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
7: and live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL.
8: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: एंड
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश.
1: एंड
10: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.

0: hit station for the hit nation. Hey! FM 100.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
2: अहमद, हटो वहाँ से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: कूल किंग.
6: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बार, लेकिन बीपी हाई.
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.

0: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
5: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Kisne kaha tha paise bacha?

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खा वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam AGS Tubular Battery Dil Ko Hai Aaram
0: And
5: Cool King Hair Oil Jaise Chalta Phirta AC
0: And HBL Freedom Account Jahan Khwab वहाँ HBL एंड
6: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
7: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस कैश
0: एंड
8: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: This program was brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
2: And HBL Freedom Account. Jaha Khab. वहाँ HBL
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
6: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
2: एंड
7: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
2: एंड
8: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: And
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg 100% आगे बढ़ो बिना रुके
10: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
11: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
13: कूल किंग
14: अबे देख के नहीं चलाता क्या
15: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों जब देखो
16: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
17: आम चीजों पर समझौता क्यों करें श्वाब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाब सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
18: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
18: दुनी दो दो दुनी चार
19: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
20: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
21: ये क्या है भाई
20: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
6: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
20: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: Cool King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: FM247365
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: In the rhythm of life, rhythm of when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
5: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: دس پروگرام

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग, चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
10: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
12: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
11: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैट सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Kisne kaha tha paise bacha?

0: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: तोहीने रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha, aankhon ne double check kiya, phir bhi shock same. Isi baat लेकिन बीपी हाई.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program is brought to you by
7: Tufaan Hai.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई ना होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद

0: 6:08 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan Hai.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
4: अहमद, हटो वहां से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: FM 100.
14: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum, Pakistan.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.

0: hit station for the hit nation. FM 100.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
2: अहमद, हटो वहां से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी. घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.
5: In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
6: This is FM 100. Across the nation.
7: It's Jazz.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.

0: 사과.
1: 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: 100 FM.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 Like us on Facebook.com/FM 247 365 FM 247 365
9: Evening Drive Time.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: बैन अवी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
7: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है।
9: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: This is your music.

जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और क्यू शीट जो है वो हम रेडी कर चुके हैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्रैक मैंने आपको सुनाने मैसेजेस मेरे आने से पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पर वो भी मैंने शामिल करने हैं। दोबारा बता दूं कि चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 36386 पर। अयाज अहमद मुझे कहते हैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करें, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी आगाज करेंगे आमिर सलीम के इस खूबसूरत ट्रैक से।

0: क्या बात है जनाब, क्या बात है आमिर सलीम की, क्या जबरदस्त सिंगर थे। अब अमेरिका में अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स देखेंगे। जब भी 90s के गाने पॉप गानों का जिक्र होता है तो आमिर सलीम हमेशा, अजनबी गाना भी उनका बहुत हिट, लेकिन इस गाने की भी अपनी बात। और जनाब मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। बिलावल भाई गिजरी से मैसेज कर रहे हैं सिंबल जी को और तमाम लिसनर्स को, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यार वैसे गर्मी बहुत शदीद है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही होती है, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र, उम्मीद है कि आप गर्मी को फुल टाइम एंजॉय करें। ओके थो बिलावल भाई, की हो गया था ना, कोई एंजॉय नहीं हो रहा भाई। अस्सलाम वालेकुम अयाज, वेलकम। और खुद आप सबको नहीं, खुदाल मेरा खजा लिखना चाह रहे हैं, मुश्किल होता है इनका मैसेज मुझे पढ़ना। सलाम संजू और नसरीन पटेल को। अच्छा रुबाब जी लग रही है मुझे खास से, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाम लिखा करें यार, नाम तो लिखते ही नहीं आप। गुलशन आरा का मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं आप? गुलशन आरा, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ईद कैसी? हाँ ईद को तो जमाना हो गया, गुजरे हुए भाई। अच्छा ईद के प्रोग्राम में से आपकी जवेरिया सऊद वाली पॉडकास्ट प्रोग्राम देखी, बहुत मजा आया यार। वैसे बाकी यार वो जो मैं कसाई मना था उसमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सच बात ये कि जवेरिया सऊद जो है वो खुद इतनी लाइवली हैं और इतनी मजे का जो है ना उनके साथ बाकी शो करने में मजा आता है। आप जब भी कोई इस तरह की चीज करें तो साथ वाला मेजबान, वो मेजबान बनी हुई थी और मैं गेस्ट, तो वो मजे का होता है, तो शो वाकई अच्छा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कह रही है देखकर और आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा था। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी तमाम सुनने वाले को साहब। गुलशन आरा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब कादिर बख्श आ गया, कादिर बख्श कितने हो जो तुसी चौधरी साहब? अयाज भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, बिलावल भाई और संजू को सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। संजू हिट हो तुम, फुल टाइम हिट हो, इतना जिक्र संजू आपका होता है और बिलावल भाई भी नो डाउट हिट हो जाते हैं। अच्छा रेगुलर मैसेज करते हैं, रेगुलर सुनते हैं, तो वो नो डाउट लोग उनको याद रखते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा भी होते हैं। अच्छा जी उम्मीद रुबाब का फिर मैसेज आ गया, अयाज को सबको सलाम और अमीन को भी सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और जनाब आ गई हैं मिसेस फारूक, अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट स्टार्ट, कैसे मिजाज, इतनी दुआएं, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। मजीद मैसेज पढ़ने लेकिन 3 मिनट की ब्रेक नजर आ रही है। गयासुद्दीन बलबन भी आ गए मुल्तान से, सबको सलाम और दुआ के दिए।
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: है आराम।
1: कूल किंग।
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: लाइक अस ऑन
4: जनाब शामिल करेंगे हर दिल अजीज, मेरे बहुत फेवरेट, आप सबके फेवरेट जुनैद जमशेद। क्या ही बात है इनके ट्रैक्स की। एंजॉय करें और मैसेजेस करें 3636 पर।

मजेदार। जुनैद जमशेद तेरे लिए, क्या बात है जनाब, मुझे तो ये इसका टाइटल और वो जो कैसेट कवर थे वो अभी याद आ रहे, वो भी याद आ गए, क्या दौर था। संजीदा जी कहनी अस्सलाम वालेकुम, प्यार से वेलकम कर दिया, आमिर सलीम का गाना पसंद आ गया है और कह रही मैं इंडियन तर्ज के भी गाने बनाया हुआ, भाई इंडिया वाले तो छाप देते हैं उनका कुछ पता नहीं। और जुनैद जमशेद का गाना भी पसंद आ गया, शायरी भी पसंद आ गई, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और कौन आ गया भैया? सुद्दीन बलबन कह रहे हैं मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, भाई मुल्तान का जिक्र हो रही है कि आंधी आई है, 45 टेम्परेचर था दो एक दिन पहले, अब 29 डिग्री पे आ गया है। सरकार मजे है, मुल्तान वालों आपके मजे। और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया, लवली सॉन्ग, ये गाने मैं कहता हूँ जिस टाइम भी सुने आप हिट और फिट लगते हैं। फरीन शहजादी क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, सब सुनने वालों को मेरा सलाम। और बेसब्री से शो का वेट कर, आए हाय क्या बात है, चले जनाब और फरीन शहजादी आ जाती तो शादी के गाने मुझे जो है ना वो याद आने लग जाते हैं, एक दो गाने रखे थोड़ी सी देर में। अच्छा ये रुबाब ने फिर मैसेज किया लेकिन समझ में मुझे नहीं आया, अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताइएगा। अयाज आपकी तारीफ जो ज्यादा तारीफ करते हैं मुझे नहीं करता मालूम, ऐसा ना करो अयाज जी मालूम, क्या कहना चाह रही रुबाब, क्या कहना चाह रही मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा से भेजो। बिलावल कह रहे हैं भाई सर जी स्टार्टिंग के सॉन्ग तो अच्छे हैं, लो जी फिर चेक करो एक और सॉन्ग।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: Jinaab, welcome back to the FM 100 aur saath saath messages KHI space. Text kare, send kare 3636 par. Aur doston, FIFA World Cup bhi start ho gaya. अच्छा मुझे नहीं आइडिया था फुटबॉल से जरा मैं इतना वो नहीं था लेकिन वर्ल्ड कप मैं जरूर देखता हूँ फुटबॉल का तो जैसे ही आपके भाई को पता चला कि भाई फुटबॉल शुरू हो गया है तो भाई टीवी शीवी ऑन कर दिया मैंने और पहला मैच मैंने देखा मेक्सिको जीत गया साउथ अफ्रीका हार गया साउथ अफ्रीका की बहुत ही फारिक टीम लगी मुझे कोई मुकाबला नहीं किया उन्होंने और दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका और नहीं दूसरा मैच साउथ कोरिया साउथ कोरिया जो है वो जीत गया उन दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक मेक्सिको को भी साउथ कोरिया को भी साउथ अफ्रीका क्यों आ रहा मेरे मुंह पे साउथ जैसे ही आता है अफ्रीका खुद ही मुंह से निकल रहा साउथ कोरिया भी एक चीज है तो जो मैं आज के मैचों का भी बताऊंगा कि आज 12 बजे के बाद सुकून से आप टीवी स्पोर्ट्स पर भी मैच आ रही है तो इत्मीनान के साथ देख सकते हैं अच्छा जी ये तो थी मैच की सूरत हाल वापस आते हैं अपने जरा शो की जाने तो और मिसेस फारूक ने मुझे जहां पूरी डिटेल से बताया कि भाई क्या लिखना चाहिए रुबाब कह रही रुबाब फरमा रही हैं मुझे आपकी तारीफ इतने अच्छे तरह करना नहीं आती जैसे सब करते हैं अरे रुबाब जी आप मैसेज करते हैं यही बहुत है यही बहुत है और मिसेस फारूक थैंक यू वेरी मच आपने मुझे समझाया अच्छा भाई जबरदस्त सॉन्ग ये सिंगर भी बहुत अच्छे थे यासिर अख्तर इनको कौन भूल सकता है भाई ये वो दौर था कि नए नए सिंगर नए नए गाने नए नए एल्बम्स और नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती थी अब ये वाला ट्रेंड खत्म हो गया अब इस तरह मजा नहीं आ रहा अच्छा जनाब और संजीदा कहनी सोचती हूँ अब तारीफ नहीं करूंगी सबसे सभी अच्छे सॉन्ग है मगर अच्छे सॉन्ग में से भी बेहतरीन सॉन्ग लाना ये भी कमाल अरे संजीदा जी ये आपका कमाल है कि आप इस तरह समझती हैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छा जनाब अयाज आपको संजू नसरीन पटेल इन लोगों को याद रखते हैं मुझे कोई नहीं याद मालूम भाई रुबाब को भी याद रखा करो अल्लाह का वास्ता है रुबाब को याद रखा करो जहां संजू को गाने डेडिकेट करते हो बिलावल को गाने डेडिकेट करते हो मिसेस फारूक को

0: डेडिकेट करते हो, मिसेस फारूक को गाने डेडिकेट करते हो, रुबाब को भी करते हो, हाथ टूट जाते हैं तुम लोगों के, क्यों नहीं रुबाब को याद करते? रुबाब बस इतनी तारीफ काफी है, इतना मैंने बोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। भाई जनाब टाइम चेक और 3 मिनट बल्कि 4 मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
7: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: FM 24/7 365
9: active yummy adorable zabardast
10: ye pyaar to suno yaar।

हाय जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100। कीप द फायर बर्निंग, क्या जबरदस्त ट्रैक था रियल स्पीड वैगन का। बैकग्राउंड में इसको भी रखते हैं और आपके मैसेजेस भी शामिल करते हैं। अच्छा जनाब, सलाम, कैसे हैं? सबको सलाम, जरीनूर, वालेकुम अस्सलाम, सब बिल्कुल ठीक हैं और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। क्या दौर था यार, ये खतों वाला भी कितनी तमीज होती थी, कितने अदब होते थे, और अब है तू तड़ाक पे, तू तड़ाक से शुरू हो गए, तू तड़ाक पे खत्म, और तूफान है बदतमीजी। चले बहरा। अच्छा बिलावल कहने, सर फीफा वर्ल्ड कप एंड T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, दो बड़े इवेंट एक साथ हो रहे हैं। या वुमेन्स का तो क्या वो देख रहा हूं, मैं तो नहीं इतना शौक से देखता, लेकिन खैर खवातीन देख रही होती, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की तो फिर अपनी बात है। अच्छा भाई, आज भी दो मैचेस हैं और ये कनाडा, अमेरिका और भी एक वहां स्टेट्स में खेला जा रहा है, तो जहां रात होती तो वहां दिन, और उस टाइम पे जो है वो मैचेस होते हैं 12 बजे जनाब, रात को आप देख सकते हैं। कनाडा और बोस्निया का मैच जो है वो हो रहा है, और ग्रुप बी है, और ग्रुप डी में जो है यूएसए पैराग्वे, तो ये मैच भी आप जो है ये 6 बजे आपको सुबह उठ के देखना पड़ेगा। 12 बजे वाला तो देख लेता हूं, 6 बजे वाला मुश्किल। अच्छा जनाब, और फरीन शहजादी कह रही है कि थोड़ी देर पहले घर आए थे, बिजली के तार टूट के गिर गए और बच्चे पे गिरे और वो जख्मी हो गया। अल्लाह खैर करे यार, ये नागहानी चीज होती है, उसकी पूरी अपडेट देनी है फरीन, बच्चे की तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जनाब, नौरीन तौसीफ भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम माय हैंडसम ब्रदर, सदा हंसते मुस्कुराते रहे। नौरीन कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। और सबको सलाम दुआ कह दी, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और मैसेजेस आप लोग मुझे कर रहे हैं 3636 पर।

जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर कादिर बख्श कह रहे हैं, कादिर बख्श बलोच, रुबाब जी की नाराजगी दूर करने सॉन्ग डेडिकेट करने, ठीक हो गया कादिर भाई? और जनी नूर ने भी रुबाब को गाना डेडिकेट करने का कहा है संजीदा को, ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, नौरीन तौसीफ कह रही है, आज तो फैसलाबाद में जबरदस्त तूफान आया और साथ ही बारिश तेज तरीन थी, मौसम खुशगवार हो गया, हाय कराची में कब होगी, गर्मी का जोर टूट गया। चले जनाब, फैसलाबाद में तो कम से कम बेहतर हुए, फैसलाबाद और मुल्तान ये बेहतर हो गया काम। महाजबीन बड़े दिनों के बाद आ गई, महाजबीन कहाँ गायब थी आप, तबीयत कैसी है सबसे पहले? वालेकुम अस्सलाम, और कह रही है इंतजार बारिश का, वेदर इज टू हॉट, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद की सूरत हाल बता दी। चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने, और उसके बाद टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: FM 24/7 365 FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
6: एक्टिव यमी डॉलर 7 प्यार तो सुनो यार।

वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर मैसेंजर पर व्हाट्सएप पर। अच्छा यार डेडिकेशन चेक करें आप संजीदा जी की, नेट का कोई प्रॉब्लम हो गया है लेकिन मैसेज उन्होंने करवा दिया है कि भाई वो सुन रही हैं और हमारे साथ ही हैं वो। क्या बात है, क्या बात है संजीदा जी, आप काम भी कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जब आपको इजी हो, जब आपको कोई परेशानी ना हो तो मैसेज कर सकती हैं। और मिसेस फारूक क्या बात, पल पल की रिपोर्ट जो है ना मिसेस फारूक देती रहती हैं और अपग्रेड रखा हुआ इन्होंने भी। और माँ जमीन कह रही इतने मजे के सॉन्ग, अच्छा जी और मैं आपको गाने अच्छे अच्छे सुनाता हूँ, बल्कि थोड़ा जरा शादी वाला माहौल इसलिए बनाते हैं कि फरीन शहजादी भी आ गई हैं और कह रही कि हर जगह तूफानी बारिश हो रही है, कराची वाले गर्मी से परेशान है। फरीन शहजादी तुम कराची में हो तो तूफान की जरूरत क्या है, काफी हो तुम। अच्छा जनाब, जनाब हर दिल हम सबकी हर दिल अजीज संजीदा बहना आपका शो सुन रही है, हमें जब पहुंच गया ये मैसेज, ओ हो संजीदा जी क्या बात है, क्या बात है संजीदा। अच्छा जी फरीन शहजादी आपको और आपकी सिस्टर को और जहां जहां शादियां हो रही है वहां पर इस गाने को डेडिकेट कर देता हूं डायरेक्ट, और वो है कैसे।

हाय हाय क्या बात है। अच्छा पुराने वक्तों की शादियों में ये गाने गाते थे, अब तो नहीं, अब तो भूल गए इस गाने को भी, सर होता ही नहीं अब तो। पहले वक्तों में आंटियां पान वान खाती थी, पानदान होते थे, ये फैशन भी खत्म हो गया, पान वान सब खत्म हो गया भैया। और फरीन शहजादी को जो है गाना पसंद आ गया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। महफिल जमी हुई है इसी तरह जबरदस्त ट्रैक्स की, तो एक और इसी तरह हंसता मुस्कुराता गाना, और वो है कैसे मैसेज कर रहे हैं, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

हाँ, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक रेशम की चुनरी बाय हेवंस, बड़ा अच्छा बैंड था ये भी, और इनका क्यूट सा ये ट्रैक, हंसता मुस्कुराता कलरफुल सा ये वीडियो। बिलावल कह रहे सर मेरी शादी के लिए दुआ कराएं, शादी हो जाए बेटा, ऐसा क्या काम किया तुमने जो क्यों नहीं हो रही शादी, वजह क्या है, कोई नजर वजर, कुछ जादू टोटका, क्या हो गया तुम पे। अच्छा जी सलाम सर, अयाज सज्जाद अली का सॉन्ग कुछ लड़कियां मुझे तंग करें, पता नहीं कौन लड़कियां अफशीन आपको तंग कर रही है, मैं हैरान हूं, बड़े दिनों से बच्ची फरमाइश करती है, चले जनाब अफशीन आपके लिए।

0: We will take a short commercial break.
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया। FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM247365
3: Active, yummy, adorable, zabardast. Kya pyaas to suno yaar.

0: best of 90s, 80s, and today with Ayaz Ahmad.
1: Rajna, welcome back. Aur Fareen Shahzadi, bahut shukriya. Playlist bahut pasand aa rahi hai inko. Kyunki har tarah ka music jo hai wo sunne ko mil raha hai. Chalo, ye achhi baat ho gayi. कुछ टाइम से हम तंग करने इस प्यार से उस प्यार में जाने जा एक सॉन्ग पंजाबी लगा दो जानी हाँ कौन हो तुसी जी कौन हो तुसी यार नाम नहीं लिखते भाई तो मैंने भी गाना नहीं लगा सॉन्ग सुपर नाइस जरीनूर बहुत शुक्रिया नसरीन पटेल कह रही बहुत दिनों के बाद सुना अच्छा जी चलें जनाब उम्मीद करता हूँ ये गाना भी बहुत दिनों बाद आपने सुना होगा
2: आकाश का एक गाना
1: हाय हाय अली हैदर भाई हैं इनका ग्रुप था आकाश
2: उनके नाम करते हैं जो जो अभी तक मेरी तरह कुमारे हैं और दिल वाले हैं

Welcome back to FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। मलिया जी ने मैसेज कर दिया, मलिया क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अली जफर का कोई सा भी ट्रैक मुझे डेडिकेट करने, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अली जफर का गाना एक है मेरे पास। अच्छा जनाब, और संजीता जी परेशान है, कह रही भाई मैं मैसेज नहीं कर पा रही तो मुझे मजा नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आप सुन रही हैं और मैसेज कर रही हैं। कोई ना कोई मसला हो जाता है, वैसे ऐसा कैसे हो, स्मूथ हर चीज चल जाए ऐसा नहीं, कोई ना कोई मसाइल होते हैं। जैसे कि हमारा फोन के लिए काफी सारे बिलाल भाई पूछ रहे कब फोन का सिलसिला सही होगा। बिलाल भाई मुझे खुद नहीं पता चल रहा, अब मैं टोपी दे सकता हूं वरना और कुछ नहीं। कार्रवाई हो रही है अनकरीब, अचानक किसी दिन भी मैं कह सकता हूं कि कॉल करें आप, लेकिन फिलहाल जरा मैं आपसे माजरा चाहूंगा, फोन बंद है। बिलावल कह रहे हैं सर आउट क्लास प्लेलिस्ट, अरे नहीं करो यार, वाकई में इसी बात पर ये वाला ट्रैक अली जफर का डेडिकेट कर देता हूं खातून।

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: We will take a short commercial break.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmad, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: कूल किंग।
3: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365
6: Active,
7: yummy,
6: adorable, seven.
7: Ye pyaas to suno yaar.

ऑलराइट जना बैंग बैंग, बड़ा पुराना गाना ये, उर्दू में भी लोगों ने गाया इसको, वैसे म्यूजिक ये चुरा के मकसद कॉपी कर दिया, लेकिन असल ये है। अच्छा जनाब, मैसेज कर दिया है हमें आयशा जी, वालेकुम सलाम, सुन रही हूँ, लेट हो गई, अरे माजरत, कौन सी क्लास है ये? अच्छा जनाब, और सर एक फास्ट सिंधी सॉन्ग, यार वैसे बड़े दिनों से लोग जो है मुझे सिंधी गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज क्यू शीट में मैंने पहले से ही जो है रखा हुआ था एक गाना, तो लीजिए भैया। नाम नहीं लिखा आपने, नाम भी लिखे, कौन है भाई? आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ।

हर जमान का ना एक अपना ही मजा, अपना ही साउंड। डांस करने को दिल कर रहा है। शमरणी मेराणी क्या कहते हैं भैया, बहुत कम मैं सिंधी आर्टिस्टों को जानता हूं, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट में अगर बात की जाए तो इनका नाम सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मनमोहन लाल, मनमोहन कैसे हो मेरे भाई, उमरकोट से मैसेज करने का शुक्रिया। और कह रहे हैं सुपर हिट प्लेलिस्ट, इसमें एक छोटी सी फरमाइश पूरी कर दें मैडम की आवाज में। अच्छा मैडम वाले गाने ना मैं मंडे को प्ले करता हूँ, और वैसे भी रिक्वेस्ट हो तो है नहीं आज मोहन लाल, अदा मोहन लाल समझो थोड़ा। अच्छा जनाब इरफान सलीम मलीर कराची से कह रहे हैं शो तो हमेशा की तरह जबरदस्त। इरफान भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फारूक गाना पसंद आ रहा है, हालांकि समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन गाना कमाल है। और फरीन शहजादी का

अच्छा जी, वो कह रहे हैं भाई गाना बलोची नहीं सिंधी, अबे सिंधी है यार, बलोची नहीं है भैया, भाई आप लोग बताएं बलोची है कि सिंधी है। चलो इसी बात में इरफान भाई ने एक कहानी डाल दी है, लो जी अबरारुल हक, इनके बगैर तो की शीट कंप्लीट ही नहीं है।

0: a party that won't end.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से वाज आनी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी

एशिया फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मसले

0: शियात को न कहीं जिंदगी को हाथे। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्य नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
2: Active Yummy Adorable Zabardast Seedha Gaane Khush Hoon Ye Pyaar To Suno Yaad

सुना जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100। और भाई वो कह रहे हैं ये बलोची गाना है, सिंधी गाना। अच्छा जी बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं तो फिर सही कह रहे हो। मिसेस फारूक आप भी सुन ले, बलोची गाना है। और इरफान कह रहे हैं मैं बलोची हूँ और समझता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। इरफान भाई आप बिल्कुल फिर सही कह रहे हो। अक्सर सिंधी आर्टिस्ट जो है ना बलोची गाने भी गा लेते हैं, जबान तकरीबन ये उनको समझ में आ जाती है इसलिए भी। पंजाबी जो लोग हैं वो पंजाबी गाने भी गाते हैं, सराई की भी गा लेते हैं, हो सकता है। आप लोग सही, आप लोग जीत गए, ट्रॉफी आपकी भाई। सोबिया कह रही है सर शाजिया खुश का सॉन्ग। नहीं भाई नहीं, अब तो टाइम बिल्कुल अपने एंड की तरफ पहुंच गया है और रिक्वेस्ट तो है नहीं। ओए होए संजीदा आ गई वापस। मुझे तो कभी शहजादे ने डेडिकेट सॉन्ग नहीं किया, प्यारी दोस्त रुबाब इतनी हसास ना। वो है भाई, वो है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगला सॉन्ग मेरी तरफ से रुबाब को डेडिकेट करने, मासूम हसीना को। चले जनाब ठीक हो गया, चले जी वापस आ गई है संजीदा जी, वापस आ गई। और नेक्स्ट गाना आपकी तरफ से रुबाब जी को डेडिकेट कर देते हैं, और वो है कैसे,

हाँ क्या गाना था यार, पुराने वक्तों में ले जाता ये ट्रैक। देखते देखते टाइम जो है यार, ये टाइम इतनी जल्दी क्यों चला जाता है, 2 घंटों की स्पीड बहुत तेज है भाई। अच्छा जी, कुछ गाने फिर रह गए आज। हालांकि ये वाला यार, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना था, इसको प्ले करना था मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा सा आगे कर लेता हूं इसको। वाह, जुनून की अगर बात की जाए, अगर उनकी पहचान, तो ये वो गाना है।

राइट जनाब, ये मैं किसी दिन आराम से कंप्लीट ये सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा, और एक ये ट्रैक भी रह गया आज वैसे, और ये बड़ा ही जबरदस्त बैंड हुआ करता था 90s में, और इस बैंड का नाम था जुपिटर्स, और ये ट्रैक खास तौर पे अच्छा जुपिटर्स में हर आदमी ने गाया वैसे।

ऑलराइट जनाब, टाइम खत्म हो रहा है हमारे शुक और हाय हाय माजबीन कह रही है मुझे गाना डेडिकेट नहीं किया। अरे सरकार, सारे गाने आपको डेडिकेट कर दिया मैंने, और स्पेशली लास्ट ट्रैक आपके लिए माजबीन जी। और संजीदा क्या बात है, गाने पसंद आ रहे हैं इनको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल.

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट। दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

थिंकिंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: honking.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.

दिल धड़कने की एक कहानी है, आसमां से उधर बुलंदी से नीचे गिरता हुआ ये पानी है, दिल धड़कने की ये कहानी है।

सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। ओ मेरा माही आ गया और आपके मैसेजेस भी आना शुरू हो चुके हैं, मगर अभी हम बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और उस चर्चा पे ही बात करेंगे। मैंने सोच लिया भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, बहुत पड़ रही है, लोग बड़ी उफ उफ कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, वाकई इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है या फिर साड़ियां बर्दाश्त खत्म हो गई है, यानी कि हमारी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या सीन है? वैसे गर्मी पड़ रही है यार, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गर्मी से बचने के आसान तरीके कौन से हैं, ये आपने मुझे आज बताना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बगैर बेचारे एसी के जो है वो गर्मियों का सामना कर रहे हैं मेरी तरह, और बहुत से लोग जो है वो एसी जो है वो इस तरह चला रहे होंगे, भाई दो घंटे चला लेते हैं, दो घंटे बाद बंद कर देंगे बिल के डर से। ऐसा नहीं है कि उनके पास मशीन नहीं रखी हुई, मशीन रखी हुई है, मगर उससे ज्यादा, उस मशीन से ज्यादा महंगा जो है बिल आ जाता है। लोग जैक्सन मार्केट जा रहे होते हैं, वहां से जाकर जी सस्ते एसी खरीद के ला रहे हैं, और वहां पर आप जाएं तो रश, ऐसा लगता है पूरा कराची वहीं पे टूटा हुआ है। और फिर होता ही है कि मिसाल के तौर पर वहां से आपको एसी, मिसाल दे रहा हूं, 50,000 रुपए में मिले, तो आपने जाके एसी लगा लिया, अब बेचारे इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके बीसी डाल कर एसी ले आए। ये गरीबों के हवाले से बात बता रही हूं, और उसके बाद एसी चल रहा है, हाय ठंड पड़ गई यार, वाह मजा आ गया भाई, सुकून से सो गए। लेकिन सारा सुकून बर्बाद उस वक्त होता है जब एक महीने के बाद बिल जो आता है वो उस एसी से भी महंगा होता है, यानी 50-60 हजार रुपए का बिल आ गया, तो आदमी के होश खो जाते हैं, फिर वही एसी बेच के बिल अदा किया जाता है। खैर, ये गर्मी से बचने के तरीके आपने बताने हैं, और कैसन गर्मी पड़ रहा है जरा बताना हमको। मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं, और सबसे पहले जाएंगे जनाब हम 3636 के प्यारे प्यारे से मैसेजेस के जानब। सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से यूसुफ भाई पारोश, कह रहे तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम नेट की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची अरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? यूसुफ भाई कैसी गर्मी पड़ रही है जरा बताइएगा, कैसे ख्याल आते हैं बच्चों के और बेगम के? और हमारे प्यार से बेनजरीन नूर भी आ गए, कहिए सलाम कैसी हैं? वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, और कहीं कल भी भूल गए थे सॉन्ग संजू के नाम करना है, कसम से, अरे आज कर देंगे, पहले पहले कर देंगे। संजू के लिए गाना जब भी चले ना जरीन नूर, तो समझा करें कि वो आपकी ही जानिब से डेडिकेट हो रहा है भाई, तमाम लोग सुन लो, यानी कि समझ रहे हैं ना, ये भाई जो है वो बेचारा आजकल दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रही है, एक तो गर्मी भी बहुत है, ऊपर से इधर उधर के हालात, यानी कि समझ रही है ना, तो उसमें आदमी भूल जाए तो यानी के माफ कर दिया करे। सलाम एने भाई, क्या हाल है? शो आला, शो का आगाज बहुत अच्छा, मजा आ गया भाई, और सबको सलाम का है। आदिल भाई हमारे न्यू लियारी से, यार ये न्यू लियारी और ओल्ड लियारी क्या फर्क है जरा बताना यार आदिल भाई।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको। हाय दिल बेचारा,
1: दिल वाकई बड़ा बेचारा होता है, ये बात फैक्ट है। और अब आप खिदमत से इसके जरूर जाएंगे। और अनम मेमन कह रही है 100 का बैलेंस डलवाया कंजूस ने,
0: चलो डलवा तो दिए ना, वैसे बात बुरी की है उसने भाई। और भाई सजाद अली का ही सॉन्ग पसंद है, अरे वाह भाई वाह। आयशा मेमन सालगिरह पर वैसे तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, सज्जाद अली की आवाज में ही सरप्राइज दूंगा भाई। तुम्हारी सालगिरह है तो यानी कि समझ आइए ना आप, सरप्राइज तो बनता है। अमीन भाई मेट्रोवेल से अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई माइक से कर लो, ओके हो गया। और शो ऑसम बिंदास बोले तो जगास, सलाम तो ऑल, सलाम तो ऑल एफएम हंदरत फैमिली, डेडिकेट सॉन्ग तो उमेर बाब। और अरे भाई गाने क्यों लिखते हो यार, डेडिकेशन होता है, डेडिकेट हो गया बस। अब जैसे उन्होंने ये मेमन फैमिली जितने भी कजन है, ये कहते हैं सज्जाद अली का गाना चला दो, ये नहीं बोलते ये वाला चलो दो, ये वाला चलो दो। तो एक गाना हम कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे, आपकी जानब से ही कर देंगे यार, समझ रहे हो ना आप। हाँ, और संजू का नेटवर्क नहीं आ रहा, मेरी बात हुई थी अभी का नहीं पता। जरीन नूर कितनी अच्छी हो तुम, कैसे प्यारे प्यारे से इन्फॉर्मेशन देती रहती हो, कबूतर बन जाती हो, अरे वाह भाई वाह। ओके ठीक है, तो संजू आप सुन तो रही होंगी। और इनामुल हक कह रहे हैं भाई जान जब हुई शादी कायनात की, पता है पता ही नहीं चला किस किस को बुलाया था। जुबानी कलामी तो पूरी रेडियो इंडस्ट्री को बुला लिया था उन्होंने, लेकिन बताया था उन्होंने बहुत अरसे से, तो चर्चा करती थी मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी, इतनी खुश थी। अब पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, उसको जो शोर है वो कह रहे यार बहुत बोलती है यार। अच्छा जी बहुत गर्मी है भाई, आप अपना ख्याल रखें। जरीनूर थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी जी बहना, लेकिन इस गर्मी में ख्याल कैसे रखें जरा ये बताएं, यही तो पूछ रहा हूँ। हर कोई ये कहता है यार गर्मी बहुत है यार, ख्याल रखना अपना भाई, बहुत ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अभी क्या ख्याल रखें ये बताओ, आप लोग बताएं ना, फिर उसके बाद आखिर में मैं भी बताऊंगा, यानी कि समझ रहे ना। अब मिर्जा साहब आ गए ना साडे गुज्जर खान, तो मिर्जा शुजात साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को उन्होंने आधा वर्ष का है। और गुज्जर खान में बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है, गुज्जर खान में नहीं है सिर्फ पूरे पंजाब में हो रही है यार, एक ये कराची यार बारिश ही हो रही, मौसम खुशगवार और रंगीन हो चुका है यहाँ का, क्या बात है भाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि कराची में भी इसी तरह बरान रहमत बरसाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग भी सब दुआ करें यार। और मिर्जा साहब दी मैसेज दो बार, इरफान मेहमान आ गए, कह रहे सोने को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल, वालेकुम अस्सलाम। सुनियो एक सॉन्ग है सज्जाद अली का, आयशा मेमन और सब कजन्स को डेडिकेट कर दें। अच्छा ये नहीं लिख रहा कि उसकी बर्थडे, क्यों इरफान क्यों नहीं लिखा। इनामुल हक भाई मुझे भी भूल गए आज मुश्क गायब है, है, है इरफान मेमन मैं ही कहने वाला था ऐसे, खुशबू वाला मैसेज आता तो फिर वो अलग होता है ना यार। एक बंदा आता था वो खुशबू वाला सलाम पेश करता था, मैसेजेस आते थे उसके, आए सो स्वीट यार, तमाम ही हसीन समातों को मेरा खुशबुओं से भरा हुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम, हाय सो स्वीट यार, ये याद आ गया यार मुझे। और आप यकीन माने वो इतने प्यार से लिखता था कि मुझे खुशबू महसूस होती थी उसके, उस मैसेज में मोहब्बत और प्यार भरा आता था, यानी कि समझ रहे ना आप। हाँ मेरा ख्याल है गुलिस्ताने जौहर से आता था उसका, परफ्यूम चौक से, परफ्यूम से भरा हुआ सलाम कह रहा था वो। खैर जी और आगे बढ़ते, गुलाम हुसैन साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। हेलो जी, लगता है जरीन नूर उसका नेटवर्क ओके टेक हो गया, मतलब उसके मोबाइल का नेटवर्क, यानी कि संजू आ चुकी हैं, क्या कह रही हैं। अबे मैसेज कहाँ गया इसका, पुराना मैसेज था, नेटवर्क खराब ही लग रहा है मुझे। क्या लिखा हुआ है भाई, मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई इनका मैसेज जो है ना शुरू कहाँ से हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। संजू आपका मैसेज थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और फरीन शहजादी कह रही है हबीबी। अच्छा दो दो जगह मैसेज आ रहे हैं इसके, दो दो दफा आ रहे हैं। कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके सोने। ओके टेक है, ओके टेक है। अच्छा जी नदीम भाई कैसे हैं। मैं महरीन बलोच, महरीन बलोच तुम्हारा गाना याद है मुझे, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा हो गया दादू से हमारी प्यारी सी बीना महरीन बलोच आ गई है। और आपका हर शो बहुत खूब होता है और प्लीज कल का सॉन्ग याद से चला जाए। लो तो आपने कहा महरीन बलोच के लिए हम गाना चला रहे हैं, लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, हैप्पी बर्थडे अगेन आयशा। और ये ट्रैक बड़ा एक्सक्लूसिव ट्रैक है सज्जाद अली का, आपने बहुत कम सुना होगा और मुश्किल से सुना होगा। ये मैं जिस तरह लाया हूँ इतना ही था, कंप्लीट ही चलाया है मैंने। और आयशा का मैसेज भी आ गया, थैंक यू ब्रदर। और इरफान भाई की तरफ से जो केक आया है उनको भी थैंक यू, पहली बार SMS किया है। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, ढेर सारी दुआएं आयशा तुम्हारे लिए। और इरफान मेमन भी सुन रहे हैं और उन तक आपका मैसेज पहुंच चुका है। मिर्जा शुजात साहब कह रहे हैं मेरा लॉन्ग गो आज, क्या खूबसूरत जबरदस्त आला गाना ला देता तुसी, जबरदस्त सॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपको पसंद आया, और की चाहिए। गर्मी बहुत है, बर्दाश्त से बाहर की गर्मी हो रही है, पहले की गर्मी बर्दाश्त हो जाती थी लेकिन अब लग पता जाता है, होश ठिकाने आ जाते हैं। ये फरहीन शहजादी कह रही है मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान मेमन भी ने भी कह थैंक यू भी कह दिया है विश के लिए। और सुने हो, 8 कजन्स में से 5 आ गई हैं आपके शो में, जीती रहे। यार ये आपकी नहीं, मेरी भी बहने, मेरी स्वीट स्वीट सी बहने, जीती रहे, मुस्कुराती रहे। इनको दुआएं मिल रही, गाने सुनने को मिल रहे, और किया चाहिए भाई। मेरे को बताओ, मेरी टीचर की जरे, मेरे को उसने मेमनी सिखानी है। मैंने बोला था मेरे को मेमनी सिखाओ, वो बोली की करो आला। मैं बोलू की ना बोलू, एनी वे टीचर को याद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जनाब ये ट्रैक तो आपने सुना ही है लेकिन अब एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैसेज है, और वो मैसेज मैं थोड़े ऐसे होनी पड़ता हूँ।

वो मैसेज है हमारे प्यारे से शहजादे अय्यूब आफरीदी की जानिब से। अय्यूब आफरीदी साहब दौरान सफर जो है वो पिशावर में है इस वक्त, और पिशावर से आगे कहीं जा रहे हैं भाई। और भी तमाम ही हमारी प्यारी प्यारी सी समातें जो सुनती रहती हैं, हमारे प्यारे प्यारे से जो लिसनर्स हैं, उन सबको उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा है, दिल की गहराइयों से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम कहा है, और शो को मिस भी कर रहे हैं वो। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपके साथ साथ हूं नदीम भाई, आपने जरूर जरूर मेरा मैसेज जो है सब तक पहुंचाना है। मैंने बोला आपकी अमानत है, पहुंचाएंगे जान, और पहुंचा दिया हमने। उसके साथ साथ उन्होंने कहा भाई कि गाना तो डेडिकेट करना बंद था नदीम भाई, गाना डेडिकेट करो यार। मैंने बोला किसको करो? तो कहने लगे यार मैं किसको गाना डेडिकेट कर सकता हूं? आप नदीम भाई मुझे बताओ मेरे दिलो दिमाग पर कौन। मैंने बोला भाई तीन ही अल्फाज हैं जो आप हमेशा ज्यादा बोलते। तो जनाब ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, और ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे जीबीएन को, माहीन को, और निघत को, हमारे अय्यूब आफरीदी भाई की जानिब से। हेलो फड़ो।

Welcome back, Zonia. और भाई अय्यूब आफरीदी के साथ किया गया वादा हमने पूरा किया एंड आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग. और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब जो कि आप कर रहे हैं कि एशिया स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636. मैसेजेस की जानिब जाने से पहले गर्मी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी चर्चा भी होनी चाहिए ना यार. बस कंचन ही मैसेज आए हैं और मैंने आपसे पूछा कि हर कोई ये कहता ना यार गर्मी से बचो भाई, ख्याल रखो भाई, ख्याल रखो. क्या ख्याल रखें ये आपसे पूछ रहा हूं. कोई कह रहा है जूस पी लें, कोई कह रहा है जी पानी ज्यादा से ज्यादा पिए. हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने बताया पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्रूट खाएं, जूस पिए. और भी साथ साथ आपके मैसेज आ रहे हैं मगर ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ रही. क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? और यार दोस्तों से सही फरीन शहजादी ने भी कहा था. ये प्यारी सी बहन कह रही है कि गर्मी बहुत है, बर्दाश्त से बाहर की गर्मी हो रही है. पहले की गर्मी बर्दाश्त हो जाती थी लेकिन अब लग पता जाता है होश ठिकाने आ जाते, ये कह रही. तो क्या किया जाए ये कोई नहीं बता रहा. गर्मी से बचने के आसान तरीके बता दीजिए. हैं जी, थे हैं जी. और 3636 के मैसेजेस की जाने बढ़ रहे हैं हम जिंदगी के मैसेज के बाद. आगे चलते हैं जनाब. थैंक यू आयशा का भी मैसेज. अमीन कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अय्यूब लाला संगाए दासो खे जी. अय्यूब लाला खे दी जोर दे थकड़ा दी. और सलाम उमे रुबाब शो सुन रही हूँ. बिल्कुल सुन रही होंगी. पगली चुड़ैल सिस्टर संजू सिस्टर को सलाम. सॉन्ग भी डेडिकेट कर दीजिएगा. एने भाई थैंक यू. अमीन भाई बिल्कुल करेंगे. नेक्स्ट ट्रैक जो है हम जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे जरीन नूर की डेडिकेशन. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. असद कह रहे हैं कुड यू प्ले दिस सॉन्ग मैनी हसन दुनिया किसी की प्यार में जन्नत से कम नहीं. असद दिस इज नॉट अ फिल्मी सॉन्ग शो. मैंने पहले भी असद आपको बताया था और लेकिन आपके लिए मैंने फरमाइश चला दी थी आई थिंक. वैसे चल भी सकता है नहीं भी चल सकता बट ये क्योंकि फिल्मी ट्रैक है तो उसके लिए मेरा शो होता है मंगल वाले दिन रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक. तो मंगल वाले दिन अगर आप शो सुनेंगे तो आपके लिए गाना 100% चलेगा. जैसे कि मैंने आज चलाया था महरीन बलोच के लिए, उन्होंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी. मैंने बोला था कि आज के शो में चला देंगे. सो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हम चलाएंगे मंगल वाले शो में. आप सुने या ना सुने बट आपका नाम लेकर आपको डेडिकेट करेंगे. यानी कि समझ रहे ना. तो असद कुड यू प्लीज लेट मी नो एनी सजेशन रिलेटेड टू

वेलकम बैक इश्क हुआ भाई, बहुत ही जबरदस्त सिंगर है ये सना नेमत, और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रैक आप सबको भी पसंद आया होएगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और ये अल्लाह गुल्ला जारी है सारी है। और आज चर्चा हो रही है, बात हो रही है आप लोगों के साथ, गर्मी बहुत बढ़ रही है और अक्सर सब लोग कहते हैं भाई अपना ख्याल रखें भाई, गर्मी बहुत बढ़ रही है भाई। भाई क्या ख्याल रखें ये बताएं आप। तानिया हसन जी ने सबको सलाम तो कहा है, लेकिन बड़ी एक मजेदार किस्म की उन्होंने बात लिखी है, और उस बात के हवाले से फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, पुरानी बात है बचपन की बात है, कि उनकी अम्मी जो थी वो बच्चों को उनके बैग में, स्कूल बैग में या उनकी पॉकेट में प्याज रख देती थी। तो ये बहुत हैरान हुई, आंटी जी क्या कर रही हैं, या स्कूल जाके आमलेट बनाएंगे, प्याज को क्या करेंगे, वहां जाके हांडी पकाएंगे क्या करेंगे आंटी प्याज के साथ। तो आंटी ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला हमारे बुजुर्गों से ये बात चलती आ रही है कि प्याज जो है वो गर्मी से बचाती है, लू से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है इंसान को, बैग को नहीं या जेब को नहीं। तो ये बात उनको बड़ी हैरानकुन लगी उस वक्त तो, लेकिन तजर्बा जो था उन लोगों का बिल्कुल दुरुस्त था। और इस हवाले से अब इस पर मैं चर्चा कर देता हूं, ये वाकई में हकीकत है। अल्लाह ताला ने प्याज में ऐसी तासीर रखी है, और ये फैक्ट है कि प्याज अगर आप अपने पास रखें, और अभी भी गो के ये जो हमारे शहरी जितने भी हमारे शहरों में लोग रहते हैं, ये इसके ऊपर ज्यादा यकीन कह लें नहीं रखते, या फिर ओ यार ठीक है यार कोई मसला नहीं, बट जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं, वहां पर अभी भी ये सिलसिला है कि प्याज जो है वो काट कर प्याज वैसे ही जेब में रख लेते हैं। और यार प्याज कौन सा महंगा होता है भाई, गर्मी से बचने का अच्छा तरीका है, और ये वाकई में हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने भी अपने भी बुजुर्गों से सुना हुआ है, नानी दादी से भी सुना हुआ है ये बात कि प्याज जो है वो गर्मी से। अब देखें यार कितनी जबरदस्त बात हुई है, ये मैंने पूछा यार, हम अक्सर कहते ना गर्मी है भाई, अबे भाई ख्याल रखना, क्योंकि ऐसे ख्याल रखें। तो तानिया हसन जी ने बहुत जबरदस्त सी बात बताई अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, किसी की बुजुर्ग की कोई बात होती है जैसे कि आंटी ने, इनकी आंटी ने इनको बताई, तो वो उससे फायदा हुआ तो आगे बचाओ वो बात। तो ये बात आप लोगों को एक प्लस पॉइंट मिल गया भाई, एक टोटका, तो टोटका कह लेंगे, टोटके पे तो आप लोग यकीन रखते हैं ना, तो ये टोटका है भाई प्याज, खबरदार अगर उस प्याज के तल के आपने खाने की कोशिश की। तो ये थी सूरत हाल जनाब, और ये बड़ा जबरदस्त मैसेज था तानिया जी, थैंक यू वेरी मच। इस मैसेज पर आपको गाना डेडिकेट करना तो बनता है, वो हम करेंगे अभी कुछ ही देर में। नाइस सॉन्ग थैंक यू कहा है मेरी प्यार इस बेनाजरी नूर ने, यू वेलकम जी, यू वेलकम। ठंडी हवा के साथ जब बारिश होती है इंसान की रूह को खुशबू आ जाती है। वाह वाह वाह वाह वा, फरीन क्या बात है भाई तुम्हारी। अब यहां पर खुशबू कहां से आती है भाई, खुशबू तो वैसे आती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में तो ठंडी हवा के साथ बारिश हो रही होती है तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है, लेकिन आप खेतों में या खुले इलाके में चले जाए ना, मतलब खेतों में नहीं जा रहे हैं, आप खुले इलाके में चले जाए, तो जब बारिश हो रही होती है और वो भी ठंडी हवाओं के साथ, भरपूर बारिश नहीं समझ लीजिए, बूंदाबांदी या फुहार पड़ रही है, तो वो हवा के साथ मिट्टी की जो खुशबू आती है वो वाकई, कभी महसूस किया आप लोगों ने, हाय मैंने की है महसूस, उसकी बात ही वाकई रूह को एक तस्कीन सी मिल जाती है। क्या बात की है भाई फरीन, है बहना, ओके ठीक आगे बढ़ते हैं जनाब।
इरफान मेमन क्या कह रहे हैं, सुनो जब से हादसा हुआ है तब से सैड रहता हूं। कौन सा हादसा हो गया भाई तुम्हारे साथ? कौन सा हादसा? अच्छा वो तुम्हारे तो कई एक्सीडेंट हुए हैं, उसकी बात तो नहीं कर रहे। और अयूब लाला को उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा है। बहुत सी दुआएं अयूब लाला की, जहां रहें खुश रहें और जल्द आए शो की रौनक बढ़ाएं। बिल्कुल अयूब लाला, और उनके लिए फिलहाल हमें ये दुआ करनी चाहिए हम सबको कि अल्लाह ताला उनको खैर आफियत के साथ उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और वापस यहां पर कराची तक पहुंचाए। सुनो मेरी अम्मी बोलती हैं कि अपने पास प्याज रखो ज्यादा गर्मी में। देखा बात सच साबित हो रही है। और मेरी अम्मी प्याज के टुकड़े घर में काट के डाल देती हैं। तानिया हसन से पहले ये मैसेज कर दिया था सुनो। अब आपका मैसेज हमने बाद में पढ़ा, लेकिन आप दोनों ने एक ही बात की, जबरदस्त बात की, सही बात की, इसका मतलब ऑथेंटिक बात है और मैं खुद भी इसको मोर लगाता हूँ, सही बात है। हाय अल्लाह जी उमेर बाब आ गए हैं और तमाम ही सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। अमीन को भी सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। अभी उमेर बाब हम आपको गाने डेडिकेट करने वाले हैं, डोंट वरी डोंट वरी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जनाब चले उमेर बाब के मैसेज आ गए हैं तो उनको गाने भी डेडिकेट कर देते हैं। तो ये ट्रैक जो है ये अमीन की जानिब से, हमारी जानिब से उमेर बाब आपके लिए है। एलो फड़ो

Welcome back. Love song. I could use a love song. Beautiful track and I hope Mr. Asad you like it. और अब बढ़ते हैं हबीबी की जाने, अब आपके मैसेजेस की जाने. क्या आप गर्मी से परेशान हो? अगर हो तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा? स्विट्जरलैंड में हूं. मैं खुद परेशान हूं. ये कह रहे हैं सलीम मेमन साहब. इनके मैसेज के हिज्जे करने पड़ते हैं. बहुत ही प्यारा मैसेज यार. वैसे एक बात है, सलीम मेमन जो है, गर्मी हो या सर्दी हो, खुश मिजाज किस्म के इंसान है और बहुत अच्छा लगता है सलीम मेमन आपके इस तरह के चुटकुलों से. जीते रहें, मुस्कुराते रहें. और उमेर रुबाब कहे हैं, आज सारा दिन सोते रहे मालूम आप बहुत याद आए. हाय अलजी. और सॉन्ग बहुत अच्छा था. थैंक्स. जीती रहे, मुस्कुराती रहे. बाप अमीन कह रहे हैं, नहर वाले पुल कराची में तो नहीं है. मेरे ख्याल में क्लिफ्टन से सी व्यू बोलना ठीक रहेगा. हाँ ये भी बात सही है, और समंदर भी है. और अभी सोकर उठी हूँ और नींद में हूँ. मालूम शुमा ख्याल खूबी जिगर खूब हस्ते जी खूब हस्ते. ये उमेर रुबाब के ही मैसेज हैं. और हमारे मिर्जा शुजात साहब गुजर खान तो कहते हैं कि नदीम भाई टॉपिक के हवाले से मैं ये बोलूंगा कि गर्मियों में मशरूबात का तो सबको पता है लेकिन हम एहतियात नहीं करते. हमें सबसे पहले दिन के औकात में बिला वजह किसी काम के बगैर नहीं निकलना चाहिए. खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए. जरूरी है दिन में बाहर ना जाया जाए. अगर बहुत जरूरी काम हो तो छतरी या सर पर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी लाजमी साथ लेकर जाना चाहिए. आपकी इन तमाम बातों में मुझे सिर्फ एक चीज बड़ी दिल को भाई और वो ये है कि बच्चे और बुजुर्ग. अब सिलसिलेकार ये है कि मर्द हजरात ज्यादातर बाहर रहते हैं, यानी कि जाहिर काम के सिलसिले में उन्होंने तो जाना ही जाना है, तो उनको एहतियात इस हवाले से करनी चाहिए ज्यादा. अब जहां तक ताल्लुक है बुजुर्गों का और बच्चों का, तो कोशिश ये करें कि बुजुर्गों का, अपने घर के जो बुजुर्ग है ना, उनका बहुत ख्याल रखें और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें. दोपहर के वक्त खुसूसी तौर पर आप उनको बाहर ना जाने दें. यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. इरफान मेमन क्या कहते हैं भाई? उमेर रुबाब सिस्टर को अस्सलाम वालेकुम. सलीम मेमन कब इनवाइट कर रहे हैं बारबेक्यू के पार्टी पर? अब तो भाई उनके डीप फ्रीजर सारे खत्म हो चुके हैं, वो खुद पार्टी भी कराए हैं, लिहाजा बहुत मुश्किल है. जी बिल्कुल, आज समी भी गायब है. और संजू के, क्योंकि नेटवर्क के हवाले से हमें प्यारी सी बहना जरीन नूर ने बता दिया था, लगता है कि नेटवर्क जो है ना उसका भी खराब है. मुश्क का वो भी गायब है, समी भी गायब है, रूसा भी गायब है. यानी कि समझ रहे हैं ना आप, काफी लोग गायब हैं भाई आज, लेकिन आप लोगों ने भरपूर तरीके से मजा करा रहे हैं, सबको एंजॉय करवा रहे हैं. आप लोगों की पार्टिसिपेशन भरपूर तरीके से आ रही है. लव यू. हाँ एफएम की अरूसा जो है वो बिजी हैं. है लज्जी वाकई में, आपको कैसे पता है? हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं. सलाम के बाद कह रहे हैं, शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था, अब प्रोग्राम सुन रहा हूँ. हाय अल्लाह जी. सज्जाद अली का गाना तो हमने चला दिया, नूरजहां का भी चला दिया, दो फरमाइशें की हैं. आप देर से आए. और खिताबुल लाला नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अयूब आफरीदी और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा है. हर लम्हा दुआ गो नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफ बी एरिया कराची से. हलीमा पठान भी गायब है. अच्छा हलीमा पठान जो है ना मेरी प्यारी सी बहन, गो के वो गायब है मगर वो सुन रही होती हैं, इतना मुझे पता है. वो उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती है आजकल, मगर वो सुन रही होती हैं. है इरफान मेमन, यानी कि समझ रहे ना आप. कादिर बख्श बलोच कह रहे हैं, भाई मेरी तरफ से एक सॉन्ग आसिफ भाई को डेडिकेट कर दीजिएगा. आसिफ भाई को आपकी जानिब से गाना डेडिकेट कर देंगे जनाब, डोंट वरी जनाब.
तो अभी कौन सा गाना, हाँ अभी मैंने एक गाना यार डेडिकेट करना था क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारा सा लिसनर है मीर हसन बरोही, जो कि सिर्फ कॉल कर सकते हैं, वो मैसेजेस नहीं कर सकते, तो मुझे पूरा यकीन है मीर हसन बरोही सुन रहे होंगे। तो ये ट्रैक जो है मैं अपनी जानिब से और FM 100 की पूरी टीम की जानिब से खुसूसी तौर पर मीर हसन बरोही को डेडिकेट कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मेरे जितने भी बलोची बहन भाई हैं उन सबको भी डेडिकेट करेंगे। मेरा वन ऑफ मतलब माय फेवरेट सॉन्ग, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, बट बहुत ही मैलो, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आएगा। एलो फड़ो।

Welcome back. The Barsaat Jamvari. Beautiful track and I hope कि आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा. और अमीन कह रहे हैं मेरे बाप जी मुझे फारसी सीखनी है, तो भाई कहीं चला जाए जाकर सीख ले. मालूम मुझे फारसी बहुत अच्छा लगता है. ये अच्छी बात है, अगर आपको कोई जुबान अच्छी लगती है तो आप उसको सीखिए भाई. और खुजाबिरी का मतलब क्या है, कहाँ चली, इसका मतलब ये है. और अमीन भाई मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि अगर इफ यू लाइक द फारसी, अगर आपको फारसी पसंद है तो आप उसको सीखिए, वाकई में सीखिए. आपको आजकल तो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट के थ्रू जो है आप बहुत आसानी से ये सीख सकते हैं. और हमारे इरफान मेमन आज फुल टाइम जो है एक्टिव है. कह रहे सुने हो आज की प्लेलिस्ट अच्छी है, न्यू सॉन्ग है और अच्छे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे. कोशिश यही है यार मैं कि ज्यादा से ज्यादा नए ट्रैक्स चलाऊं. और सुने हो गर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों की शक्लें शनाख्ती कार्ड से मिल जाए. क्या ख्याल है आपका? यार अजीब बात की है सलीम अहमद. गर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों की शक्लें जो है उनके शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर से मिल जाए. वाह वाह भाई, बहुत खूब बहुत खूब. अच्छा अक्सर जो है ना लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि जो शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर आती है ना, यार इतनी बुरी आ गई तस्वीर. कहते हैं सब, लेकिन जैसे हैं भाई वैसी तो आएगी ना. तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. अच्छा गर्मी के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी आप लोगों की बातें मेरे सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ मैं आपको, वैसे आपको ये मालूम होगा कि गर्मी से बचने के तरीके जो हैं, एक तो टोटका भी आपको प्यास के हवाले से पता चला है, और उसके अलावा कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ज्यादा से ज्यादा. और ज्यादा से ज्यादा पानी से मुराद ये कि प्यास नहीं लगी हुई है. आदमी सोचता है यार मुझे प्यास तो लगी नहीं हुई है, तो भी पानी पीजिए. प्यास नहीं भी लगी हुई तो भी पानी पीजिए. और मैंने आपको एक दफा बताया भी था कि एक दिन में कम से कम जो है वो 10, मतलब कम से कम से मुराद ये तकरीबन हमें 10 गिलास पीने चाहिए पानी के, 10 गिलास हमें पीने चाहिए. तो अब गर्मी है, जाहिर है उसकी वजह से पसीना भी आता है, तो जिस्म में जो है वो पानी की कमी ना हो, इसलिए आप ज्यादातर लोग जो हैं वो 10 गिलास पूरे नहीं कर पाते हैं. तो जिनको ऐसा है गिने, पानी को गिने, ग्लासेस को गिने कि यार मैंने सुबह कितने पिए थे और उसके बाद दोपहर में कितने पिए, शाम में कितने पिए, तो इनको काउंट जरूर करें. और काउंट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार आप दिन में 10 गिलास पी भी लेते हैं या नहीं पीते. और उसके साथ साथ अब मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि घर में अगर फ्रिज में पानी की बोतलें रखी हुई हैं तो एक बोतल में कितने ग्लास आते हैं, 3 ग्लास आते हैं, 4 ग्लास आते हैं, उस हिसाब से आपको पता होगा. तो उस बोतल के ऊपर मार्क कर लें कि ये 4 ग्लासेस की है, और अपनी बोतल अलग रखें. और कोशिश ये करें, मुख्तसर ये कि कोई भी तरीका इख्तियार करें, पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिएं. और घर से निकलते वक्त ज्यादातर, वैसे मैंने देखा है, इवन ये बाइकर्स को भी मैंने देखा है, चलो हेलमेट तो दूर की बात है, ठीक है ना, कैप भी नहीं लगा रहे होते भाई, कैप भी नहीं लगा रहे होते. तो भाई आप कैप भी पहना करें, सर को ढांपे, मतलब मुख्तसर ये कि सर आपका ढका होना चाहिए. वैसे तो वैसे मैं एक बड़ी तरख बात करने वाला था, छोड़े इसको. तो कैप या छतरी, यानी कि अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, वो अगर इस्तेमाल कर सके तो वो भी कर लें. लेकिन खैर अम्ब्रेला का इस्तेमाल तो हमारे पाकिस्तान में देखने में आता ही नहीं है कि कोई छतरी लेकर घूम रहा है धूप से बचने के लिए. छतरी उसी वक्त निकलती है जब बारिश हो रही होती है. और उसके साथ साथ मशरूबात में कोशिश ये करें कि कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स से इज्तनाब बरतें, ये ज्यादा बेहतर है. मशरूबात और भी बहुत सारे हैं, जैसे लस्सी है, सिकंजवी है, सिकंजी में जो होता है वो लीमू पानी जिसको हम कहते हैं, लीमू पानी जो है वो, और नारियल का पानी होता है, ये वो है जो कि आप के जिस्म की जो जरूरियात हैं उसको पूरा कर सकते हैं.
मतलब इनके फायदे हैं, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका जो है वो नुकसान है उसमें ज्यादा, लेकिन लोग पीते हैं भाई क्या करें। तो और भी बहुत सारे हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल जितना ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये बातें इस वजह से बताना शुरू कर रहा हूं कि फिर जब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है, आप लोगों के मैसेजेस जब मैं पढ़ रहा होता हूं, ट्रैक्स चल रहे होते हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता और मैं तफसील से बता नहीं पाता हूं और गर्मी जो है वो होती है। अच्छा, एक और भी चीज है कि गर्मियों में जो रंग है, कपड़ों के रंग जो है, वो भी मौसम के हिसाब से हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ये सिर्फ गर्मियों के हवाले से नहीं कह रहा हूं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, खिजां हो, बहार हो, हर मौसम के अपने रंग हैं और उसके उसके फायदे भी हैं। आपको बताऊं कि जितने आप लाइट कपड़े पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, तो आप अपने आप को उतना ही हल्का महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ ये होता है कि डार्क कलर्स जो हम यूज करते हैं कपड़ों में, तो सूरज की रोशनी जो है वो एब्जॉर्व करते हैं, वो रंग जो है उसको अपने अंदर जज्ब करते हैं। जो सबसे ज्यादा जो रंग है वो काला रंग है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब करता है। और इसी तरह डार्क कलर, डार्क ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है, ये कलर्स जो हैं जितने भी हैं डार्क जो हैं, उनका इस्तेमाल जो है कोशिश करें कि इन रंगों का इस्तेमाल जो है कपड़ों में वो कम, हल्के रंग, लाइट कलर्स जो हैं उनका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। उसके साथ ही साथ कपड़ों की जो साख है वो भी बड़ा मैटर करती है। सिल्की कपड़े पहनेंगे गर्मी में, धूप में, खवातीन के लिए ये, क्योंकि खवातीन ही सिल्की कपड़े पहनती हैं ज्यादातर, तो उनके लिए वो भी सही नहीं है। लॉन जाहिर है वो इस्तेमाल होता है, कॉटन है, कि इन इन कपड़ों का अगर इस्तेमाल हो तो वो ज्यादा बेहतर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जनाब, फ्रूट्स के हवाले से जो मैंने कहा था, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये वो वाले मैं आपको फ्रूट्स के बता रहा हूं जो कि गर्मियों में आपके लिए फायदा मंद है। आम तो आम है ना जी, बादशाह है आम तो, हाय आम, आम से याद आया, हर साल हमारे पास आते थे आम कहीं से, अब कहां के आम, आम के आम गुठलियों के नाम। हाँ जी, तो और ऐसा भी होता है कि गर्मियों में अक्सर आपने देखा है कि वैसे कराची में ये है सिलसिला का, डिहाइड्रेशन के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए जो है वो कैंप्स लग जाते हैं और वहां पर पानी जो है वो दिया जा रहा होता है। कोशिश करें साए में, साए वाले रास्ते को इख्तियार करें, और अगर ज्यादा देर धूप में है तो थोड़ी देर के लिए साए में जाकर खड़े हो जाएं, अपने जिस्म को थोड़ा सा नॉर्मल करें। और ये मैं उन लड़कों के लिए स्पेशली ये बात कर रहा हूं कि जो बाइकर्स हैं, बाइकें चलाते हैं, और दोपहर के वक्त उनकी जॉब, नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि उनको रोडों पर घूमना होता है, ठीक है ना। जैसे बाइकिया वगैरह वाले जो हैं, ये लड़के भी बेचारे इसी तरीके से घूम रहे होते हैं, तो जब अपनी कोई एक दो राइड्स जब आप कर लें तो उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए साए में बैठ जाएं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं गर्मी के हवाले से, एहतियात के हवाले से, हमें एहतियात भी करनी चाहिए, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। तो सुने हो, लेकर चलते हैं आपको एक और ट्रैक की जानिब, बड़ा जबरदस्त सा ट्रैक किथे गया, डेडिकेशन की जानिब आ जाए जनाब। ठीक है, हाँ जी, ये वाला ट्रैक तानिया हसन जी हमें सुन रही हैं। तो तानिया जी, हमने कहा था कि आपने इतना अच्छा हमें टोटके के बारे में मशवरा दिया और हमारे सामाईन ने सुना भी, तो हम आपको एक ट्रैक डेडिकेट करेंगे और आपको पसंद भी है। एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे कहानी सुनो जुबानी सुनो। तानिया हसन जी सुन रही है और तानिया हसन ने एक और बहुत जबरदस्त बात बताई। यार आपका दिमाग आज बहुत चल रहा है भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। और वैसे ऐसी बातें जिससे किसी का फायदा हो जाए वो जरूर करनी चाहिए। तो वो ये है कि विटामिन सी कैल्सी जो है इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, खुसूसी तौर पर खवातीन को। खुसूसी तौर पर खवातीन जो है वो इसका इस्तेमाल क्यों करें ये भी सवाल है ना, उनको करना वैसे चाहिए। वो उसकी वजह ये है कि गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। अच्छा अब आपको इस हवाले से एक मिसाल दे देता हूं और मिसाल ये दे देता हूं कि कराची में टेम्परेचर जो है वो आजकल कितना है, 36, 40, 41, 42 ये चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको आता जी कि टेम्परेचर आज 40 है और फील जो है महसूस जो किया जाता है गर्मी को, वो फील जो आ रही है वो तकरीबन 50 के करीब है, यानी कि 10 डिग्री ज्यादा। उसकी वजह बताता हूं कि सूरज की जानिब से जो गर्मी की तपिश जमीन तक आ रही है और वो कराची में जिस मकाम पर आ रही है वहां पर वो 40 के हिसाब से आ रही है, 40 डिग्री के हिसाब से आ रही है जमीन तक। और जमीन के पास जब वो पहुंचती है तो फिर जमीन में हम लोग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, गाड़ियां हैं, धुआं है उनका, पोल्यूशन है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जब मिट्टी उड़ रही है, ये तमाम चीजें जो हैं वो उस 40 डिग्री को 50 तक पहुंचा देते हैं। तो ये हो गई आपको, हम सोचते हैं ना कि यार 40 डिग्री थी और फील 50 हो रही थी भाई हमें, और आदमी उफ उफ कर उठता है। तो सल्यूट है उन तमाम खवातीन को जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं कि किचन में जब वो घर का काम कर रही होती हैं, चूल्हे के सामने खड़ी होती हैं और नाश्ता भी बन रहा होता है, उसके बाद दोपहर का खाना भी बन रहा होता है, उसके बाद चाय भी बन रही होती है, उसके बाद रात का खाना भी बन रहा होता है, उसके बाद अगर फरमाइशें आ गई भाई ये कर दो यार, वो एक नान तल दो और साथ में चाय बना दो, इस तरह की फरमाइशें भी उनको हो रही होती हैं और वो किचन में खड़ी ये तमाम काम कर रही होती हैं। तो गर्मी अगर 40 डिग्री की है तो किचन में वो फील जो है वो तकरीबन 50-55 पर चली जाती है। तो ये जो है ये सल्यूट है उन तमाम खवातीन को जो किचन में काम कर रही होती हैं। तो इस वजह से जो है उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है, कैल्सी जो है वो आप विटामिन सी जिसको कहते हैं कि उसकी टैबलेट्स जो आती हैं और उसके साशे भी आते हैं तो उसका इस्तेमाल भी करें। और आप मेरी बात पर अमल मत कीजिएगा, डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं आप, और मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर आपको कहेगा कि आप इसको गाहे बगाहे गर्मियों में इस्तेमाल करें और ये एक अच्छी चीज है। मैंने आपको फिर बता रहा हूं ये बात कि डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, मशवरे के वो पैसे भी नहीं लेगा। तो ये तमाम सूरत हाल है जनाब। और मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, कितने के सोने हो, गर्मी पूरी कोशिश कर रही है। अरे यार ये आपका सलीम एमन भाई, मैंने मैसेज पूरा पूरा पढ़ा है, दोबारा भेज दिया आपने, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। इरफान कह रहे हैं कि हाँ सत्तू, मशरूबों में सत्तू भी बड़ा है, लेकिन मैंने आज तक पिया नहीं वैसे, लिहाजा इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और क्या लिखा हुआ है, सेकंड टोटका है, जूस फ्रूट मुझे भी दिया करें, गर्मी कम लगेगी। और लाइट सूट पहनना चाहिए बिल्कुल। और सोने हो, मेरी अम्मी वाली बात की आपने लाइट कलर का, और अनवर डॉल बेस्ट बादशाह आम का, अरे नहीं भाई चौंसा है, चौंसा अनवर डॉल भी बहुत जबरदस्त है। आम की किस्मों के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ इस शो में कि कितनी किस्में होती हैं और पाकिस्तान में कितनी किस्में हैं, ये भी बता चुका हूँ। सुने हो, हम हैदराबाद जाते हैं तो सुबह आम, दिन की रोटी में आम, रात की रोटी में आम, बहुत खाए जाते हैं वहाँ। क्या वहाँ फ्री में बट रहे होते हैं भाई क्या? है ये बता,
भाई बहुत महंगे हो गए हैं भाई, अभी और इनकी प्राइस ऊपर जाएंगी, जैसे चौंसा आएगा तो देखिएगा। अभी चिंदड़ी आम तो मेरा ख्याल है अच्छा अच्छा जो आम है वो आपको 350 रुपए में मिल रहा है पर केजी। मगर अगर आप उसमें कुछ होता है ना कि बड़े बड़े से आम है और छोटे छोटे से भी आम होते, दरमियाने आम भी होते, तो उसी हिसाब से उन्होंने प्राइजेस रखे हुए हैं कि 300, 350, 250, 200 इस तरह मिल जाते हैं। ये सिंदड़ी आम के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये सिंदड़ी आम की भी क्या बात है यार, इसका जो है खुसूसी तौर पर शेक बड़ा जबरदस्त होता है। और जनाब मिर्जा साहब कह रहे हैं वाह वाह मुझे प्यार हुआ था, किसकी याद, किसी की याद तुसी दिला दी थी नदीम बाजी। हाँ इस तरह तो होता है जनाब, इस तरह के हमारे मेरे प्यारे से बाना नौरेन तौसिफ भी आ गई है। कह रही है कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए, सो गई थी अभी आंख खुली। हाय अल्लाह जी सारा शो मिस हो गया, कोई गाल नहीं है। आज फैसलाबाद में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, घूम रहे हैं हम, लाइट अभी तक नहीं आई। अरे अल्लाह, अच्छा ये खूब है पाकिस्तान में यार, बारिश अगर हो रही है ना तो लाइट गई। मौसम बेहतरीन लाजवाब हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है, मुझे याद तो नहीं क्या होगा क्या किया। अरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, सही जा रही हूँ भैया। जो जो लोग गायब हैं उन सबके बारे में बताया है। खैर आपको वेलकम कहेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है तो जी आया नू। तो जनाब अभी आपको एक और गाने की जानिब लेके चलते हैं, और ये ट्रैक मुझे पसंद है और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। आतिफ असलम और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने ये ट्रैक गाया हुआ है, अब थोड़ा सा पुराना हो गया है बट ब्यूटीफुल ट्रैक, आई होप यू लाइक इट।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। आतिफ असलम का ट्रैक हमने आप लोगों को सुनाया, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वक्त और हालात की वजह से शो सुनने का मौका ही नहीं मिलता, अभी सुनना शुरू किया है। ये हमारी प्यारी सी बहन सबा गुल है। सबा गुल, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, कोई मसला नहीं है। हर एक के साथ जिंदगी में नशेब व फराज, उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपने अपने लिए अभी वक्त निकाला और शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैसेज मैं जरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उमेर रुबाब का ये मैसेज है।

आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा। खैर जी, अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। नौरीन कहती हैं कि दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। हवा के साथ उड़ गया घर जिस परिंदे का, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है।

फेवरेट ट्रैक, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है ये सुनने को, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात जो है अब वो होगी जनाब एतवार वाले दिन यानी कि संडे को, संडे को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो दिल की गहराइयों से माजरत, इजाजत दीजिए और गाने को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।

خود اپنی حقیقت کہہ گئے. میں نے پوچھا میری ہستی, بولے

इजहार हूं तेरे तेरे होने का, मैं इजहार हूं, मैं